0: मिना
1: कुमाल नामर अरवई ले ने काहे किन अतो को ने सिना
2: ओसे तुम कुलोनिनो
1: वान मुकुलोनिन काहे के मुकुलोनियो
2: मुकुलोनिनो नि रेरन नो काहे कि दुराची युगो
1: निन्नो बखान बखान ए मुकुलोनि ले बाबी शबाले कुलु टुचेन
2: पार्टीयो तो सिवा तो से अपोस्टुल केरशावा फेरावा
1: आयो
2: अहिंदो आयो शुक्र रात रे रे कमो आने रो हाय नारो के ला हुन्नो
1: ने मोर वनो पवेले नि हिकु ने मोर वई वो हनन हा कुवरो के लीवा
2: आयो मुलुकु चाले इरे यो हानो
1: ए
2: ताबो गोते शुक्र
1: आयो मसिका है कि नि रेडियो लोनी पिया सही सही वो
2: ओंका लोका लोको तिगेलुओ मोको लाबो के न मुतामी मुमु
1: अनो हिमिया Mano, lesho wo shuluwe lo wo vo o kala vo.
2: Oh, le valo no te po valo sila tima la man le pahe shuluwe lo to kale ni.
1: Shuluwe lo le. Chao, chao.
2: Ote po shukurela.